साहब सच्चे पातशाह जदों दिल्ली आ रहे सन तां कुरुक्षेत्र दी पवित्र धरती तो लंघे तां पंडित लाल चंद जो मन्या परमन्या विद्वान सी जदों सुनिया के श्री गुरु हरकिशन साहब जी आ रहे हैं ते बाल अवस्था है विद्या दा हंकार होन करके कहन लगा एक बच्चा पांच सत साल दा गुरु नहीं हो सकता। चलो वेखिए पूछिए एडा लंबा नाम किवें रखा दे। द्वापर युग दे भगवान कृष्ण ने भी श्री कृष्ण नाम रखवाया है। इना ने श्री गुरु हर कृष्ण साहब रखाया ते आके जदों दर्शन कीते दर्शन करके ता मन निहाल हो गया ते पुछन लगा महाराज भई भगवान कृष्ण द्वापर युग दे अवतार होए हन उना ने श्री कृष्ण नाम रखाया सी और गीता दा उचारण कीता सी ते आप दा नाम भी श्री गुरु हरकृष्ण साहब है ते कम से कम तुसी गीता दे अर्थ ही करके विखा दियो उचारण करो श्री कम से कम गीता दे अर्थ करके विखा दियो। गुरु हरकृष्ण साहब अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाइए जिन्हां नूं 14 लोकां दी खबर होवे जिन्हां दे हिरदे विच निरंकार दी जोत जग रही होवे उन्हां लई की मुश्किल सी। मन विच सोचिया जे मैं अर्थ कर दिते ता मन विच सोचेगा कि हो सकदा है छोटे होंदिया किसी पंडित कोलों अर्थ पढ़े होन ते कहन लगे भाई असी की करने आन अर्थ तू कोई अपना बंदा लिया ये अर्थ ता उदे कोलों भी करवा देंगे गुरु नानक दी बख्शिश नाल। उचारण करो श्री सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। इस पंडित ने एक चीवर मेहरा जो महामूर्ख सी जिदे मुख तो कोई शुद्ध बचन भी नहीं सी निकलता थर थराउंदा सी गल कर दिया उनू ले आया कहन लगा महाराज जे कराउने जे तां इहदे को

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

एक प्रकरण चल रहा है यो 2004 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा 400 साल प्रकाश दिवस आ रहा है उनु समर्पित छे विशेषताएं गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां पर एंड नहीं समुद्र दे किनारे करना दी है कोई होर चुभी मारे होर कड़े पहली विशेषताई जिन्हें अवतार धरती ते आए गए गुरु नानक गया नहीं दसवें जामे तो बाद शब्द रूप विच सदा

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कारयोग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी, भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी, जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने, वह भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने। साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी, वैनकूवर तो वीर जी आए ने, तो बड़ा दर्शनदार संगत दे होए ने। तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने, तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है। तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन, पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण करवाउणियां हन। आओ इस तों पहला एक रीत फिर गायन करांगे। पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख, बहुत ही सुंदर है, पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण।

वारे विच सोने में लपेटी हाथ चौबन ही फड़ी रही पेशी दर पेशी अते मिसल हजार रही खेल गयो खेली।

ते हर वेले शराब दी मस्ती विच गुट रहना जुलम दा होने दुख देना प्रजा नू। प्रजा दा हर जीव अरदास करदा है खुदावंद करी जां तां इनू चुक लै ते जां सानू चुक लै, असी बड़े तंग आ गए हां, जां कृपा कर कोई अपना फकीर भेज

गुरु ने फिर सेवा विच ला दिता। आख्या भाई अपने मन रूपी भांडे नूं पहला साफ कर, फिर तैनू बंदगी दी दात देवांगे, भाव सेवा कर। ते रोज अदम बादशाह ने अमृत वेदे महापुरखां दा इशनान कराउणा। 12 साल बीत गए, उस फकीर

पर मैं तुहाडा बचन नहीं मोड़ सकदा। मैं जावांगा जरूर तुहाडा बचन मान के, पर अपनी मेहर दा हाथ भी मेरे सिर ते रखना। उचारण करो श्री वाहे। बादशाह अदम चल पिया अपनी बादशाही वाल, ते गुरु ने ऐसी लीला रची। जंगल बियाबान दे विच एक सुंदर महल है। अदम बादशाह की वेखदा है, जंगल बियाबान विच एक सुंदर महल है।

सलामत अपने गुरु दे चरणा विच आ गया ते चरण पकड़ दे महाराज मैनू सिमरन दी दात दियो कर देवो मेर नाम जपदा रहा तेरा जी दुनिया है मुसाफिर खाना रहन दा बसेरा जी।

सारे के दरबार में तौस सरंदे ते रबाब बजा के इना रीतां दा कीर्तन सतगुरु दी हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहब

अपनी नुकरानी नु बहुत मार रही। मन विच दर्द आया, बाबा जी इधर नु गए, ज्यों ही पौड़ियां दे अगे जा के खलोते ते इस सुंदरी ने गुस्से विच आ के इस नुकरानी नु उपरों तका मार दिता। अज्यों पौड़ियां चो डिगी ना ते फरीद जी अगे खलोते ने पकड़ के उठा लिया, क्यों बई ऐ क्यों तेनू मार रही, क्यों तेरे नाल एडा गुस्सा पे कर दी। हंजू पर के आखन लगी, बाबा गरीबनी हां, एदी नौकर हां, साडे गरीबां दे पले सवाए अमीरां दे तके कुछ बिना लिखिया। हंजू पर ले इन्नी नू सुंदरे भी चवारे ते आ गए, फरीद जे ये मेरी नुकरानी है, कोई भी काम चंगी तरह नहीं करती, कोई भी काम ख्याल नहीं नाल नहीं करती, आज मैं इसनू आख्या वे तू सुरमा पी के तैयार कर, भाव कजल पीट के तैयार कर, मैं अखां विच पाना है। जदों मैं कजल अखां विच पाया ते मेरी अखां दे विच रड़क पई है, अजे तक भी मेरी सज्जी अख विच रड़क पै रही है। इसने कजल चंगी तरह नहीं पीठा, चंगी तरह नहीं तैयार कीता, कोई भी काम चंगी तरह नहीं कर दी, इसे दे लायक है। ते सत्संगियो फरीद जी ने अखां मूंद लिया, ऐ मेरे प्रभु आ देख तेरी दुनिया ते किड़ा किड़ा फर्क है, इको जे सारे इंसान, इको जे सब दे हाथ पैर, ते किसे नू तू नौकर ते किसे नू मालक बना देता है। एक अमीर दी अख विच दर्द होया ते गरीब दा

कान्हा राग तो बाद कल्याण राग दा आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा औ कांधरा कल्याणा दी तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करदा है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक करदी है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा दिता कि माया दे सारे जतन किसे काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते सुतंत्र राग हन। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हन अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगदे हन। इस दा बाजी सुर गंधार अते समाधी निषाद है। गायन समा है रात दा प्रथम पहर। राग कल्याण विच श्रवण करो 2 शब्दों दा कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावहगे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद तुन आनंद वेद। श्रवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावहगे।